0: Image FM 97.9.
1: शुभ दिन प्रायोजक आरबी कॉम्प्लेक्स पाको न्यू रोड अ कंप्लीट सुपरमार्केट पावर्ड बाय
2: लक्ष्मी सनराइज बैंक लक्ष्मा संगसंगई.

0: विगत 39 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लाजिमपाट काठमाडौँ।
1: शुभ दिन, शुभ दिन। प्रायोजक आरबी कॉम्प्लेक्स पाको न्यू रोड, अ कंप्लीट सुपरमार्केट, पावर्ड बाय
2: लक्ष्मी सनराइज बैंक, लक्ष्मा संगसंगई।

नमस्कार, म प्रदीप कुमार मैनाली। संगत विकमा शिवराज विश्वकर्माको स्वर मेरो शब्द मेरै संगीतमा राख्दैछु यो गीत।